0: रेडियो प्रकृति एफएम 93.4 मेगाहर्ज।
1: तपाईको नबिल बैंक में खाता छ कि छैन त?

Essential. LG ले ले आयो नया LG Essential Series. अब किफायती मूल्य में refrigerator, washing machine, AC को complete range. 10 वर्ष को warranty सहित 0% no cost EMI. नागरिकता भए पुग्छ. हर एक घर को खुशी घर घर में LG. LG, life's good.